0: ले बीवाल उम्र तें
1: अंचरा ने जिन नमोनी कर गए हाई तुम जमीन बंधे का चुंचन
0: इन्हीं हरी वाल वंदन ही उक
1: हनम वाल तीन चंचंगन
0: हो चेन हनम वाल तीन तुष्मल
1: नरी गुरुन देरा
0: हाइसुल
1: लिवशोगी तुमरुल जबगोचे देगी काच्चिर काच्चिर असर मांचिन वाबुल्च
0: यद्दिन हाइसुंजना चोईजन खित्तिन जान
1: काच्चिरिन उजर बल्बल्दक
0: शुयां फूकत काच्चिते हिम अच्छा बोल हो चिन हन वाल तीन तुष्मल
1: चूलंग चांग तुष्मल इन अल्ली इधन
0: फुंयंग गुंग तक लेकिन
1: हर तुम धन नम बेद
0: फिर आज रस्वल थाई
1: सब अपनी